0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में बढ़ोतरी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इन तनावों को कम करने के हर संभव उपाय और सभी राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार रात में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और तनाव तुरंत कम करने की अपील दोहराई। उन्होंने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने तनाव तत्काल कम करने के लिए सभी संभव उपाय और राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि हाल के हमलों से आम नागरिकों को विनाशकारी नुकसान हुआ है।
4: अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो कह रही हैं, इन हमलों में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। बड़ी नागरिक आबादी वाले शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया गया या भारी नुकसान पहुंचाया गया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए हैं। हम इन हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो के शब्द।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य एक अहम वाणिज्यिक नौवहन मार्ग है, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र में हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तनाव कम करने और कूटनैतिक समाधान तलाशने की अपील की। यूएन महासचिव ने अमेरिका और ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद ने होर्मुज जल डमरू मध्य में नागरिक जहाजों पर हाल में हुए हमलों की निंदा की। यूएन महासचिव ने चेतावनी दी कि पूर्ण स्तर पर हिंसक टकराव शुरू होने से क्षेत्र के लोगों और उससे बाहर भी विनाशकारी परिणाम होंगे। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़े हिंसक टकराव के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। सैकड़ों जहाजों पर करीब 6,000 नाविक फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने ईरान की धमकियों और खाड़ी देशों के विरुद्ध कथित हमलों की निंदा की है। IMO महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि सुरक्षित हालात बहाल होने तक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही से बचना चाहिए। IMO के अनुसार अब तक 136 जहाजों और 2,900 नाविकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।
2: 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अरबों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन रिपोर्ट ने आगाह किया है कि इन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकारों को अब अपनी कोशिशें कहीं अधिक तेज करनी होंगी। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को शांति के लिए साझा रूपरेखा कहा गया है। इस वर्ष सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF का ध्यान परिवर्तनकारी, समतापूर्ण, नवाचारी और समन्वित कार्यवाही पर केंद्रित था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। ये मंच 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, चुनौतियों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा करेगा। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल मिला है, बिजली की पहुंच दुनिया की 92% आबादी तक पहुंची है और इंटरनेट की पहुंच 40% से बढ़कर 74% हो गई है। लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अधिकतर लक्ष्य अब भी पटरी पर नहीं है। केवल 36% लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि गरीबी, खाद्य असुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस वर्ष HLPF में स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, शहरों और वैश्विक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के युग में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार 7 जुलाई को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज समूहों, शिक्षकों और बाल कल्याण विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है। गठबंधन का मानना है कि AI बच्चों के सीखने, खेलने और बड़े होने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए उनके अधिकारों को बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के दौर में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। अब तक 17 देश इससे जुड़ चुके हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
5: We do not let medicine reach a child until it is proven safe.
3: हम किसी दवा को तब तक बच्चे तक नहीं पहुंचने देते जब तक वे सुरक्षित साबित ना हो जाए। हम हर खिलौने की जांच करते हैं, मगर AI हमारे बच्चों की पढ़ाई, दोस्तियों और सबसे निजी सवालों तक पहुंच गया है, इससे पहले कि किसी ने पूछा हो कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा।
5: Before anyone asked what it would do to them.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। गठबंधन का कहना है कि AI बच्चों की पढ़ाई, खेल और आपसी संपर्क के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए AI प्रणालियां बनाते समय बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और उनकी राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: जलवायु निगरानी सेवा द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के जलवायु सूचना प्रमुख जॉन केनेडी ने कहा कि 1976 की ऐतिहासिक ताप लहर के बाद से पिछले 50 वर्षों में यूरोप का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ चुका है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महाद्वीप है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नई जलवायु रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर ये दूसरा सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया गया। WMO ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताप लहरें अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं। अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम से सूखे व जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ गया है। WHO के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूरोप में गर्मी से जुड़ी 2 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से पूर्व चेतावनी प्रणालियां मजबूत करने और गर्मी से निपटने की कार्य योजनाएं लागू करने का आग्रह किया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल जुप्पी यूक्रेन के 4 दिवस के दौरे के बाद 16 जुलाई को रोम लौटे। यूक्रेन के राज्य दिवस उत्सव मनाने के बाद इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत युद्ध के कैदियों, यूक्रेन के बच्चों की वापसी, मानवीय मदद एवं कैदियों के परिवारों की ओर से कार्डिनल से रूस की जेलों का दौरा करने के आग्रह पर केंद्रित थी। उन्होंने 2023 में यूक्रेन में अपना पहला मिशन पूरा किया था। लाविव क्षेत्र एवं कीव के बीच इन 4 दिनों में उन्होंने पोप लियो 14वें का सामीप्य एवं उनकी प्रार्थनाओं का संदेश दिया, जिन्होंने बार बार शांति एवं मानव सम्मान की रक्षा की अपील की। कार्डिनल का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार दोपहर को संत माइकल प्रांगण में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लेना था, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और दूसरे सिविल एवं धार्मिक अधिकारी शामिल हुए। बातचीत के दौरान मंत्री सिबिहा ने मानवीय मदद के लिए परमधम पीठ को धन्यवाद दिया और चल रहे शांति प्रयासों और मानवीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला, उनकी रिहाई को आसान बनाने के लिए एक मानवीय प्रणाली की मांग की और रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में अलेश्की एवं होला प्रिस्टन के समुदाय तक मानवीय पहुंच की आवश्यकता का जिक्र किया। मंत्री ने की 25 ग्लाउरा पर हाल ही में हुए हमले का भी मुद्दा उठाया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी अगस्त में 975वीं सालगिरह मनाई जाएगी और इसकी सुरक्षा एवं मरम्मत को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्डिनल जुप्पी के अन्य यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कैदियों की वापसी, यूक्रेनी बच्चों की वापसी, मानवीय सहायता एवं नागरिकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। कार्डिनल ने दोहराया कि वैटिकन की कोशिशों के केंद्र में मानवीय कार्य रहेगा। उन्होंने कहा, एक सैनिक, एक आम आदमी या एक बच्चे का अपने परिवार से मिलना भी शांति की तरफ एक कदम है। हर संभव कोशिश जारी रहेगी, यह लियो 14वें की इच्छा है। मानवीय प्रतिबद्धता को राजनीतिक या सैन्य बातों से ऊपर होना चाहिए। कार्डिनल और यूक्रेन में पोप के प्रतिनिधि महाधर्माध्यक्ष विश्वलदास कुलबोकस के समक्ष रखी कई मांगों में से एक यह थी कि सभी के बदले सभी कैदी विनिमय का समर्थन किया जाए, जिसके तहत रूस में बंद लगभग 7,000 यूक्रेनी कैदियों और यूक्रेन में बंद लगभग 4,000 रूसी कैदियों की पूरी तरह से अदला बदली की जाए। मुलाकातों में लापता लोगों के मामलों, आम लोगों को वापस लाने और सीमा पार ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर भी बात हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैटिकन कई सालों से काम कर रहा है। महारानी कमिला से मुलाकात के बाद सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया भर की कार्तिक धर्म बहनें मानव तस्करी के खिलाफ काम करके संघर्ष वाले क्षेत्रों में और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में कमजोर महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करना जारी रखी हुई हैं। राजा चार्ल्स तृतीय एवं रानी कमिला के वैटिकन दौरे के दौरान उनसे अपनी पहली मुलाकात के एक साल से भी कम समय में ही सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यूआईएसजी के प्रतिनिधि लंदन गए और क्लारेंस हाउस में महारानी से फिर से मुलाकात की। उन्होंने उनसे दुनिया के कुछ सबसे कमजोर समुदायों के बीच अपने मिशन के अग्रिम मोर्चे की कहानियाँ साझा की। बुधवार को हुई मुलाकात ने हर महाद्वीप में सेवा कर रही कैथोलिक धर्म बहनों के काम पर चिंतन करने का मौका दिया, खासकर संघर्ष, मानव तस्करी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण पर। इसने यूआईएससी एवं वैटिकन में ब्रिटिश राजदूतावास के बीच मानव गरिमा और हिम्मत को बढ़ावा देने वाली कोशिशों का समर्थन करने में चल रहे सहयोग पर भी जोर दिया। वैटिकन के ब्रिटिश राजदूतावास में अंतरिम चार्ज द अफेयर्स डॉक्टर एनेबल इंगे ने इस मुलाकात को एक बहुत ही खास खुशी का पल बताया और कहा कि यह निमंत्रण रानी कमिला की महिला धर्म संघियों के कामों के प्रति उनकी गहरी सराहना को दिखाता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उम्मीद की थी कि धर्म बहनों को इतनी जल्दी क्लारेंस हाउस बुलाया जाएगा। यह सचमुच धर्म बहनों के कामों के लिए महारानी की गहरी तारीफ को दिखाता है।
ईरान की प्रमुख सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान के विद्युत उत्पादन केंद्रों और पुलों पर हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान पूरे पश्चिम एशिया में स्थित सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमला करेगा। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक तेहरान बातचीत के लिए सहमत नहीं होता अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर अपने हमले बढ़ा सकता है। इससे पहले ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए थे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के अंदर विभिन्न ठिकानों पर रात भर हमले जारी रखे। तेहरान ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि शत्रुता के लगातार छठे दिन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक समझौते में तनाव आ गया। अमेरिकी सैनिक ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में बेगुनाह नाविकों को धमकाने की ईरान की ताकत को कम करने के लिए कई जगहों पर 6 घंटे तक हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की। गुटेरेस ने इस बात पर फिर जोर दिया कि होर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन के सभी अधिकारों को पूरी तरह से बहाल किया जाए जो दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी नाविकों की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता या समुद्री आवागमन की आज़ादी बनाए रखने के लिए संयम बरतने की अपील की है। यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक झटके के कारण इस वर्ष के अंत तक 2.3 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे आर्थिक गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं। इससे गरीबी कम करने में वर्षों की प्रगति उलट सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में बढ़ोतरी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इन तनावों को कम करने के हर संभव उपाय और सभी राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार रात में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और तनाव तुरंत कम करने की अपील दोहराई। उन्होंने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने तनाव तत्काल कम करने के लिए सभी संभव उपाय और राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि हाल के हमलों से आम नागरिकों को विनाशकारी नुकसान हुआ है। अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो कह रही हैं, इन हमलों में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। बड़ी नागरिक आबादी वाले शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया गया या भारी नुकसान पहुंचाया गया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए हैं। हम इन हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो के शब्द।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य एक अहम वाणिज्यिक नौवहन मार्ग है, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र में हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तनाव कम करने और कूटनैतिक समाधान तलाशने की अपील की। यूएन महासचिव ने अमेरिका और ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद ने होर्मुज जल डमरू मध्य में नागरिक जहाजों पर हाल में हुए हमलों की निंदा की। यूएन महासचिव ने चेतावनी दी कि पूर्ण स्तर पर हिंसक टकराव शुरू होने से क्षेत्र के लोगों और उससे बाहर भी विनाशकारी परिणाम होंगे। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़े हिंसक टकराव के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। सैकड़ों जहाजों पर करीब 6,000 नाविक फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने ईरान की धमकियों और खाड़ी देशों के विरुद्ध कथित हमलों की निंदा की है। IMO महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि सुरक्षित हालात बहाल होने तक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही से बचना चाहिए। IMO के अनुसार अब तक 136 जहाजों और 2,900 नाविकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।
2: 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अरबों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन रिपोर्ट ने आगाह किया है कि इन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकारों को अब अपनी कोशिशें कहीं अधिक तेज करनी होंगी। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को शांति के लिए साझा रूपरेखा कहा गया है। इस वर्ष सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF का ध्यान परिवर्तनकारी, समतापूर्ण, नवाचारी और समन्वित कार्यवाही पर केंद्रित था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। ये मंच 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, चुनौतियों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा करेगा। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल मिला है, बिजली की पहुंच दुनिया की 92% आबादी तक पहुंची है और इंटरनेट की पहुंच 40% से बढ़कर 74% हो गई है। लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अधिकतर लक्ष्य अब भी पटरी पर नहीं है। केवल 36% लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि गरीबी, खाद्य असुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस वर्ष HLPF में स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, शहरों और वैश्विक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के युग में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार 7 जुलाई को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज समूहों, शिक्षकों और बाल कल्याण विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है। गठबंधन का मानना है कि AI बच्चों के सीखने, खेलने और बड़े होने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए उनके अधिकारों को बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के दौर में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। अब तक 17 देश इससे जुड़ चुके हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
4: We do not let medicine reach a child until it is proven safe.
3: हम किसी दवा को तब तक बच्चे तक नहीं पहुंचने देते जब तक वे सुरक्षित साबित ना हो जाए। हम हर खिलौने की जांच करते हैं, मगर AI हमारे बच्चों की पढ़ाई, दोस्तियों और सबसे निजी सवालों तक पहुंच गया है, इससे पहले कि किसी ने पूछा हो कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा।
4: Before anyone asked what it would do to them.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। गठबंधन का कहना है कि AI बच्चों की पढ़ाई, खेल और आपसी संपर्क के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए AI प्रणालियां बनाते समय बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और उनकी राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: जलवायु निगरानी सेवा द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के जलवायु सूचना प्रमुख जॉन केनेडी ने कहा कि 1976 की ऐतिहासिक ताप लहर के बाद से पिछले 50 वर्षों में यूरोप का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ चुका है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महाद्वीप है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नई जलवायु रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर ये दूसरा सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया गया। WMO ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताप लहरें अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं। अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम से सूखे व जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ गया है। WHO के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूरोप में गर्मी से जुड़ी 2 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से पूर्व चेतावनी प्रणालियां मजबूत करने और गर्मी से निपटने की कार्य योजनाएं लागू करने का आग्रह किया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल जुप्पी यूक्रेन के 4 दिवस के दौरे के बाद 16 जुलाई को रोम लौटे। यूक्रेन के राज्य दिवस उत्सव मनाने के बाद इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत युद्ध के कैदियों, यूक्रेन के बच्चों की वापसी, मानवीय मदद एवं कैदियों के परिवारों की ओर से कार्डिनल से रूस की जेलों का दौरा करने के आग्रह पर केंद्रित थी। उन्होंने 2023 में यूक्रेन में अपना पहला मिशन पूरा किया था। लाविव क्षेत्र एवं कीव के बीच इन 4 दिनों में उन्होंने पोप लियो 14वें का सामीप्य एवं उनकी प्रार्थनाओं का संदेश दिया, जिन्होंने बार बार शांति एवं मानव सम्मान की रक्षा की अपील की। कार्डिनल का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार दोपहर को संत माइकल प्रांगण में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लेना था, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और दूसरे सिविल एवं धार्मिक अधिकारी शामिल हुए। बातचीत के दौरान मंत्री सिबिहा ने मानवीय मदद के लिए परमधम पीठ को धन्यवाद दिया और चल रहे शांति प्रयासों और मानवीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला, उनकी रिहाई को आसान बनाने के लिए एक मानवीय प्रणाली की मांग की और रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में अलेश्की एवं होला प्रिस्टन के समुदाय तक मानवीय पहुंच की आवश्यकता का जिक्र किया। मंत्री ने की पचेस क्लाउरा पर हाल ही में हुए हमले का भी मुद्दा उठाया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी अगस्त में 975वीं सालगिरह मनाई जाएगी और इसकी सुरक्षा एवं मरम्मत को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्डिनल जुप्पी के अन्य यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कैदियों की वापसी, यूक्रेनी बच्चों की वापसी, मानवीय सहायता एवं नागरिकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। कार्डिनल ने दोहराया कि वैटिकन की कोशिशों के केंद्र में मानवीय कार्य रहेगा। उन्होंने कहा, एक सैनिक, एक आम आदमी या एक बच्चे का अपने परिवार से मिलना भी शांति की तरफ एक कदम है। हर संभव कोशिश जारी रहेगी, यह लियो 14वें की इच्छा है। मानवीय प्रतिबद्धता को राजनीतिक या सैन्य बातों से ऊपर होना चाहिए। कार्डिनल और यूक्रेन में पोप के प्रतिनिधि महाधर्मदर्श विश्वलदास कुलबोकस के समक्ष रखी कई मांगों में से एक यह थी कि सभी के बदले सभी कैदी विनिमय का समर्थन किया जाए, जिसके तहत रूस में बंद लगभग 7,000 यूक्रेनी कैदियों और यूक्रेन में बंद लगभग 4,000 रूसी कैदियों की पूरी तरह से अदला बदली की जाए। मुलाकातों में लापता लोगों के मामलों, आम लोगों को वापस लाने और सीमा पार ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर भी बात हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैटिकन कई सालों से काम कर रहा है। महारानी कमिला से मुलाकात के बाद सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया भर की कार्तिक धर्म बहनें मानव तस्करी के खिलाफ काम करके संघर्ष वाले क्षेत्रों में और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में कमजोर महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करना जारी रखी हुई हैं। राजा चार्ल्स तृतीय एवं रानी कमिला के वैटिकन दौरे के दौरान उनसे अपनी पहली मुलाकात के 1 साल से भी कम समय में ही सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ UISG के प्रतिनिधि लंदन गए और क्लारेंस हाउस में महारानी से फिर से मुलाकात की। उन्होंने उनसे दुनिया के कुछ सबसे कमजोर समुदायों के बीच अपने मिशन के अग्रिम मोर्चे की कहानियाँ साझा की। बुधवार को हुई मुलाकात ने हर महाद्वीप में सेवा कर रही कैथोलिक धर्म बहनों के काम पर चिंतन करने का मौका दिया, खासकर संघर्ष, मानव तस्करी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण पर। इसने UISG एवं वैटिकन में ब्रिटिश राजदूतावास के बीच मानव गरिमा और हिम्मत को बढ़ावा देने वाली कोशिशों का समर्थन करने में चल रहे सहयोग पर भी जोर दिया। वैटिकन के ब्रिटिश राजदूतावास में अंतरिम चार्ज द अफेयर्स डॉक्टर एनेबल इंगे ने इस मुलाकात को एक बहुत ही खास खुशी का पल बताया और कहा कि यह निमंत्रण रानी कमिला की महिला धर्म संघियों के कामों के प्रति उनकी गहरी सराहना को दिखाता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उम्मीद की थी कि धर्म बहनों को इतनी जल्दी क्लारेंस हाउस बुलाया जाएगा। यह सचमुच धर्म बहनों के कामों के लिए महारानी की गहरी तारीफ को दिखाता है।
ईरान की प्रमुख सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान के विद्युत उत्पादन केंद्रों और पुलों पर हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान पूरे पश्चिम एशिया में स्थित सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमला करेगा। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक तेहरान बातचीत के लिए सहमत नहीं होता अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर अपने हमले बढ़ा सकता है। इससे पहले ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए थे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के अंदर विभिन्न ठिकानों पर रात भर हमले जारी रखे। तेहरान ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि शत्रुता के लगातार छठे दिन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक समझौते में तनाव आ गया। अमेरिकी सैनिक ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में बेगुनाह नाविकों को धमकाने की ईरान की ताकत को कम करने के लिए कई जगहों पर 6 घंटे तक हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की। गुटेरेस ने इस बात पर फिर जोर दिया कि होर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन के सभी अधिकारों को पूरी तरह से बहाल किया जाए जो दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी नाविकों की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता या समुद्री आवागमन की आज़ादी बनाए रखने के लिए संयम बरतने की अपील की है। यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक झटके के कारण इस वर्ष के अंत तक 2.3 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे आर्थिक गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं। इससे गरीबी कम करने में वर्षों की प्रगति उलट सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज माफ हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध

0: हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त दया कर,
1: ख्रीस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त हमारी सुन,
1: ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रीस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: स्वयं की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर।

0: श्रोताओ, मानव के रूप में हमारी जिंदगी में बहुधा ऐसा होता है कि जब हम मुश्किलों और कठिनाइयों के दौर से होकर गुजर रहे होते जो हमारे लिए अंतहीन लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन को मुसीबतों और बुरी चीज़ों से भर दिया है। हमारे जहन में ईश्वर के प्रति एक तरह से संदेह की भावना उत्पन्न होती है। शायद हम उनके अस्तित्व पर भी अपने को भ्रमित होता पाते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन की परेशानियों के कारण हम ईश्वर से खफा, उन्हें भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते हैं। यह हमारे लिए मानवीय स्वभाव का हाल व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने लिए ईश्वर से सदैव अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं। निसंदेह ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और अपनों के लिए जीवन की खुशी और जीवन की समृद्धि। श्रोताओ, वर्ष के 16वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें इस सच्चाई से वाकिफ कराता है कि ईश्वर सदैव अपने में भले हैं। अपनी प्रकृति में वे सदैव हमारी भलाई करते हैं, चाहे हम अपने में कितने भी कृतघ्न और बुराइयों से भरे हुए क्यों ना हों। वे हमेशा हमारे लिए अपनी आशीष और कृपा को बिना भेदभाव किए बरसाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि ईश्वर के प्रति हमारे मनोभाव कैसे हैं।
1: यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे। जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
0: श्रोताओ, सुसमाचार की सुमधुर वचन हमें अपने जीवन रूपी हृदय के खेतों में अच्छी फसलों को विकसित करने हेतु मदद करे, जिससे हम ईश्वर के बखार में अपने को जमा करने के योग्य अनाज बन सकें। ईश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण मुफ्त में जीवन और असंख्य कृपाओं से विभूषित किया है, जिसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ बने रह सकते हैं। लेकिन अपने स्वच्छंद जीवन, स्वार्थ और घमंड के कारण हम उन्हें चुनौती देते और कई बार उनकी बुराई करते हुए भला बुरा तक कह देते हैं। वे हमें पश्चाताप का अवसर प्रदान करते और अपनी ओर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे लिए उनके पुत्र में प्रकट की गई दयालुता को प्रकट करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर की कोमलता और दयालुता को प्रकट करता है। प्रेरित संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन आत्मा हृदय की अस्पष्ट आहों को जानता और उन्हें ईश्वर के सामने हमारे निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों के सारे रहस्यों को जानता है। अतः यह हमें अपने को ईश्वर के सामने खुले रूप में प्रस्तुत करने का निमंत्रण देता है। उन्होंने हमारे जीवन रूपी खेत में सदैव अच्छे बीजों को बोया है। वे हमें सदैव अच्छी और भली चीजों की शिक्षा देते हैं। इस भांति अपने जीवन की बुरी चीजों और घटनाओं के लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर की ओर से ये चीजें हमारे लिए आती हैं। इसका साक्ष्य हमारे लिए आज का सुसमाचार प्रस्तुत करता है। ईश्वर ने सृष्टि के शुरू से ही सारी चीजों को अच्छा बनाया। उन्होंने मानवता में अच्छे बीज बोए, लेकिन शत्रु ने आकर मानव के हृदय में लोभ, लालच, घमंड और स्वार्थ के बुरे बीजों को बो दिया। आज भी अच्छी चीजों के मध्य हम बहुत सारे बुरे बीज पौधों को पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने सेवकों को उखाड़ने से मना करते हैं। इसके विपरीत वे उन्हें एक साथ बढ़ने देने की बात कहते हैं। वे कठिनी के दिन बुरे बीजों को अलग करने की बात कहते हैं। श्रोताओ, यह हमारे लिए ईश्वर के प्रेम, उदारता और स्वतंत्रता के भाव को व्यक्त करता है। ईश्वर हमें इस जीवन में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हमने संसार में व्याप्त बुराइयों के बावजूद वे सारी चीजों को एक साथ बढ़ने देते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं कि ईश्वर अपने सृष्टि में व्याप्त बुराइयों के प्रति सचेत या चिंतित नहीं है। वे निश्चित रूप में सारी चीजों की चिंता करते हैं और इसी कारण अपनी संवेदना में वे जंगली पौधों को उखाड़ने से मना करते हैं, जिससे अच्छे पौधों को हानि ना पहुंचे। यह हमारे लिए ईश्वर के धैर्य को दिखलाता है कि वे कटनी तक हम सबों को समय प्रदान करते हैं कि हम अच्छाइयों के मध्य रहते हुए उन्हें देखकर बढ़ें और अपने में परिवर्तन लाएं। ईश्वर अपनी सर्व शक्तिमता में बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे हृदय से दयालु, कोमल, उदार और स्वतंत्र हैं। श्रोताओ, आज ईश्वर हमें हृदय को खोलने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम उनके द्वारा अपने जीवन में बोए गए बीजों को देख सकें। हम अपनी कमजोरियों और खामियों को खुले हृदय से उनके पास ला सकें, जिससे वे उन्हें भी अच्छाई में परिणत करें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन की सारी चीजों में अपने बेटे के अच्छे कार्यों को पहचानने में हमारी मदद करें।

आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। गजा के निवासियों को अभी भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्रतिधर्मदक्ष के विकट जनरल धर्मदक्ष विलियम शमाली ने गजा के लोगों के सामने मौजूद गहरे मानवीय संकट के बारे बताया, जहां हजारों लोग खंडहरों के बीच टेंट में रह रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से गजा 10 अक्टूबर 2025 को लागू युद्ध विराम के तहत सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ सैद्धांतिक है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइली सैन्य हमले लगातार जारी हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्रतिधर्मदक्ष के विकट जनरल बिशप विलियम शमाली ने इस नाटकीय सच्चाई पर बात की और बताया कि इस दौरान अखबारों के पहले पन्नों और टेलीविजन स्क्रीन से दूर गजा की दुखद घटना वैसे ही है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से 9 महीनों में 265 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है और जुलाई की शुरुआत में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया है। गजा में फिलिस्तीनियों के दैनिक जीवन के बारे बताते हुए बिशप शोमाली ने कहा, गजा में लोग अब सिर्फ 47% इलाके तक ही सीमित हैं, क्योंकि इसराइलियों ने बाकी 53% पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। 80% बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं, जिनमें न सिर्फ इमारतें बल्कि जलापूर्ति एवं विद्युत प्रणाली भी शामिल हैं। कई स्कूल एवं विश्वविद्यालय अब नहीं हैं। हजारों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के बारे बताते हुए कहा, जब हम मानवीय सहायता की बात करते हैं तो हमारा मतलब भोजन, दवाइयां और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भोजन और बाकी सभी चीजों में अंतर करता हूँ। उदाहरण के लिए कुछ दवाइयाँ गजा में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सभी आवश्यक दवाइयाँ नहीं और केवल सीमित मात्रा में। पिछले कुछ महीनों से गजा में प्रवेश करने वाला भोजन व्यापारियों द्वारा इसराइल से आयात किया जा रहा है, फिर इसे गजा के अंदर बेचा जाता है। जून में गजा का दौरा करने वाले प्राधिधर्मदक्ष पित्साबाला ने पाया कि क्रिसमस से ठीक पहले उनकी पहली यात्रा के दौरान बाजार में आपूर्ति बेहतर थी। धर्मदक्ष ने कहा, मैं उस समय उनके साथ था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुकानों में अभी भी बहुत कम सामान थे। जब मैं दुकानें कहता हूँ तो मेरा मतलब एक दूसरे के बगल में स्थापित एक या दो तंबू से है, बस इतना ही। ये सुपरमार्केट नहीं है, व्यापारी इन तंबुओं को चलाते हैं और खाद्य सामग्री बेचते हैं। हम जानते हैं कि गजा के कई लोगों के पास अब नौकरी नहीं रही, वे खाना कैसे खरीद रहे हैं। इसके जवाब में धर्मदर्श ने कहा, बहुत से लोग जो नौकरी करते थे और वेतन पाते थे, खासकर जो फिलिस्तीनी सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें वेतन मिल रही है। स्कूलों में टीचर और अलग अलग सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को अभी भी वेतन मिलते हैं। हमारे अपने शिक्षकों को भी वेतन मिल रही है, हालांकि अब हमें बाकी सभी की पैसे देकर मदद करनी होगी। पहले हमने खाना बांटकर मदद की, अब हम लोगों को पैसे देकर मदद कर सकते हैं ताकि वे खुद खाना खरीद सकें। हम गजा के लैटिन पल्ली परिसर में रहने वाले अपनी पल्ली के लोगों के लिए भी यही कर रहे हैं। अमेरिका शांति योजना के अनुसार अब हमें दूसरे चरण में होना चाहिए, जिसमें हमास का आसानीकरण, पुनर्निर्माण शुरू करना और पुनर्निर्माण फंड जारी करना शामिल है। दूसरा चरण कहाँ है? इसके जवाब में धर्मदक्ष ने कहा, पुनर्निर्माण आसानीकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आसानीकरण या पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। गजा के निवासियों द्वारा आबाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर हमास का ही नियंत्रण है, इसलिए पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो सकता। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में बच्चों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे अपना दिन लकड़ी, कीले और ऐसी चीजें इकट्ठा करने में बिताते हैं जिससे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या बेचा जा सके। लेकिन अगले सितंबर से हम पौत्र परिवार पल्ले में अपना स्कूल फिर से खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम 1000 बच्चों को स्कूल में दाखिला दे सकेंगे। इस तरह वे अब सड़कों पर बेकार में अपना दिन नहीं बिताएंगे।
उनके लिए फिर से सीखना शुरू करना जरूरी है। धीरे धीरे वे युद्ध के सदमे और आघात से उभरेंगे। गजा में पौत्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित ने 17 जुलाई 2025 को हुए हमले को याद किया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और रविवार को एक विशेष समारोह मनाने की घोषणा की। इस बीच गजापट्टी में मानवीय संकट खत्म नहीं हुई है। इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं और अंदर आवागमन बहुत मुश्किल है। गजा शहर में पौत्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने बताया कि खान यूनिस के पश्चिम में एक इलाके में ड्रोन ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। गजा शहर के समुद्र तटों पर हटाए गए टेंट पर छापे मारे और शहर के जैतून एवं तूफा इलाकों में गोलीबारी हुई। युद्ध विराम अभी भी लागू होने के बावजूद गुरुवार 16 जुलाई को गजा में इसराइली सेना के द्वारा 5 लोगों की मौत हो गई। इसलिए गजा में ना तो गोलीबारी रुक रही है और ना ही मानवीय संकट समाप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले 17 जुलाई 2025 को लातिनी पल्ली में इसराइली सेना के हमले हुए थे, जिसने कलीसिया और पूरी दुनिया को हिला दिया था। फादर गैब्रियल ने हमले के 3 दिन बाद 20 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14 के शब्दों को याद किया, जिन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया था, पीड़ितों को याद किया था और शांति एवं मानवीय कानून के सम्मान के लिए आवश्यक अपील की थी। इस बीच रहने के हालात अत्यंत मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को मलबे में बदल चुकी जमीन पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप अभी बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमारी जिंदगी में बहुधा ऐसा होता है कि जब हम मुश्किलों और कठिनाइयों के दौर से होकर गुजर रहे होते जो हमारे लिए अंतहीन लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन को मुसीबतों और बुरी चीज़ों से भर दिया है। हमारे जहन में ईश्वर के प्रति एक तरह से संदेह की भावना उत्पन्न होती है। शायद हम उनके अस्तित्व पर भी अपने को भ्रमित होता पाते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन की परेशानियों के कारण हम ईश्वर से खफा, उन्हें भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते हैं। यह हमारे लिए मानवीय स्वभाव का हाल व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने लिए ईश्वर से सदैव अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं। निसंदेह ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और अपनों के लिए जीवन की खुशी और जीवन की समृद्धि। श्रोताओं, वर्ष के 16वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें इस सच्चाई से वाकिफ कराता है कि ईश्वर सदैव अपने में भले हैं। अपनी प्रकृति में वे सदैव हमारी भलाई करते हैं, चाहे हम अपने में कितने भी कृतघ्न और बुराइयों से भरे हुए क्यों ना हों। वे हमेशा हमारे लिए अपनी आशीष और कृपा को बिना भेदभाव किए बरसाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि ईश्वर के प्रति हमारे मनोभाव कैसे हैं।
1: यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे। जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
0: श्रोताओं, सुसमाचार की सुमधुर वचन हमें अपने जीवन रूपी हृदय के खेतों में अच्छी फसलों को विकसित करने हेतु मदद करे, जिससे हम ईश्वर के बखार में अपने को जमा करने के योग्य अनाज बन सकें। ईश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण मुफ्त में जीवन और असंख्य कृपाओं से विभूषित किया है, जिसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ बने रह सकते हैं। लेकिन अपने स्वच्छंद जीवन, स्वार्थ और घमंड के कारण हम उन्हें चुनौती देते और कई बार उनकी बुराई करते हुए भला बुरा तक कह देते हैं। वे हमें पश्चाताप का अवसर प्रदान करते और अपनी ओर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे लिए उनके पुत्र में प्रकट की गई दयालुता को प्रकट करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर की कोमलता और दयालुता को प्रकट करता है। प्रेरित संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन आत्मा हृदय की अस्पष्ट आहों को जानता और उन्हें ईश्वर के सामने हमारे निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों के सारे रहस्यों को जानता है। अतः यह हमें अपने को ईश्वर के सामने खुले रूप में प्रस्तुत करने का निमंत्रण देता है। उन्होंने हमारे जीवन रूपी खेत में सदैव अच्छे बीजों को बोया है। वे हमें सदैव अच्छी और भली चीजों की शिक्षा देते हैं। इस भांति अपने जीवन की बुरी चीजों और घटनाओं के लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर की ओर से ये चीजें हमारे लिए आती हैं। इसका साक्ष्य हमारे लिए आज का सुसमाचार प्रस्तुत करता है। ईश्वर ने सृष्टि के शुरू से ही सारी चीजों को अच्छा बनाया। उन्होंने मानवता में अच्छे बीज बोए, लेकिन शत्रु ने आकर मानव के हृदय में लोभ, लालच, घमंड और स्वार्थ के बुरे बीजों को बो दिया। आज भी अच्छी चीजों के मध्य हम बहुत सारे बुरे बीज पौधों को पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने सेवकों को उखाड़ने से मना करते हैं। इसके विपरीत वे उन्हें एक साथ बढ़ने देने की बात कहते हैं। वे कटनी के दिन बुरे बीजों को अलग करने की बात कहते हैं। श्रोताओ, यह हमारे लिए ईश्वर के प्रेम, उदारता और स्वतंत्रता के भाव को व्यक्त करता है। ईश्वर हमें इस जीवन में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हमें संसार में व्याप्त बुराइयों के बावजूद वे सारी चीजों को एक साथ बढ़ने देते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं कि ईश्वर अपने सृष्टि में व्याप्त बुराइयों के प्रति सचेत या चिंतित नहीं है। वे निश्चित रूप में सारी चीजों की चिंता करते हैं और इसी कारण अपनी संवेदना में वे जंगली पौधों को उखाड़ने से मना करते हैं, जिससे अच्छे पौधों को हानि ना पहुंचे। यह हमारे लिए ईश्वर के धैर्य को दिखलाता है कि वे कटनी तक हम सबों को समय प्रदान करते हैं कि हम अच्छाइयों के मध्य रहते हुए उन्हें देखकर बढ़ें और अपने में परिवर्तन लाएं। ईश्वर अपनी सर्व शक्तिमता में बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे हृदय से दयालु, कोमल, उदार और स्वतंत्र हैं। श्रोताओ, आज ईश्वर हमें हृदय को खोलने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम उनके द्वारा अपने जीवन में बोए गए बीजों को देख सकें। हम अपनी कमजोरियों और खामियों को खुले हृदय से उनके पास ला सकें, जिससे वे उन्हें भी अच्छाई में परिणत करें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन की सारी चीजों में अपने बेटे के अच्छे कार्यों को पहचानने में हमारी मदद करें।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। गजा के निवासियों को अभी भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्रतिधर्मदक्ष के विकट जनरल धर्मदक्ष विलियम शोमाली ने गजा के लोगों के सामने मौजूद गहरे मानवीय संकट के बारे बताया, जहां हजारों लोग खंडहरों के बीच टेंट में रह रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से गजा 10 अक्टूबर 2025 को लागू युद्ध विराम के तहत सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ सैद्धांतिक है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइली सैन्य हमले लगातार जारी हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्राधिधर्मदक्ष के विकट जनरल बिशप विलियम शोमाली ने इस नाटक की सच्चाई पर बात की और बताया कि इस दौरान अखबारों के पहले पन्नों और टेलीविजन स्क्रीन से दूर गजा की दुखद घटना वैसे ही है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से 9 महीनों में 265 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है और जुलाई की शुरुआत में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया है। गजा में फिलिस्तीनियों के दैनिक जीवन के बारे बताते हुए बिशप शोमाली ने कहा, गजा में लोग अब सिर्फ 47% इलाके तक ही सीमित हैं, क्योंकि इसराइलियों ने बाकी 53% पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। 80% बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं, जिनमें न सिर्फ इमारतें बल्कि जलापूर्ति एवं विद्युत प्रणाली भी शामिल हैं। कई स्कूल एवं विश्वविद्यालय अब नहीं हैं। हजारों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के बारे बताते हुए कहा, जब हम मानवीय सहायता की बात करते हैं तो हमारा मतलब भोजन, दवाइयां और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भोजन और बाकी सभी चीज़ों में अंतर करता हूँ। उदाहरण के लिए कुछ दवाइयां गजा में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सभी आवश्यक दवाइयां नहीं और केवल सीमित मात्रा में। पिछले कुछ महीनों से गजा में प्रवेश करने वाला भोजन व्यापारियों द्वारा इसराइल से आयात किया जा रहा है, फिर इसे गजा के अंदर बेचा जाता है। जून में गजा का दौरा करने वाले प्राधिधर्मदक्ष पित्साबाला ने पाया कि क्रिसमस से ठीक पहले उनकी पहली यात्रा के दौरान बाजार में आपूर्ति बेहतर थी। धर्मदक्ष ने कहा, मैं उस समय उनके साथ था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुकानों में अभी भी बहुत कम सामान थे। जब मैं दुकानें कहता हूँ तो मेरा मतलब एक दूसरे के बगल में स्थापित एक या दो तंबू से है, बस इतना ही। ये सुपरमार्केट नहीं है, व्यापारी इन तंबुओं को चलाते हैं और खाद्य सामग्री बेचते हैं। हम जानते हैं कि गजा के कई लोगों के पास अब नौकरी नहीं रही, वे खाना कैसे खरीद रहे हैं। इसके जवाब में धर्मदक्ष ने कहा, बहुत से लोग जो नौकरी करते थे और वेतन पाते थे, खासकर जो फिलिस्तीनी सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें वेतन मिल रही है। स्कूलों में टीचर और अलग अलग सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को अभी भी वेतन मिलते हैं। हमारे अपने शिक्षकों को भी वेतन मिल रही है। हालांकि अब हमें बाकी सभी की पैसे देकर मदद करनी होगी। पहले हमने खाना बांटकर मदद की, अब हम लोगों को पैसे देकर मदद कर सकते हैं ताकि वे खुद खाना खरीद सकें। हम गजा के लैटिन पल्ली परिसर में रहने वाले अपनी पल्ली के लोगों के लिए भी यही कर रहे हैं। अमेरिका शांति योजना के अनुसार अब हमें दूसरे चरण में होना चाहिए, जिसमें हमास का आसानीकरण, पुनर्निर्माण शुरू करना और पुनर्निर्माण फंड जारी करना शामिल है। दूसरा चरण कहाँ है? इसके जवाब में धर्मदक्ष ने कहा, पुनर्निर्माण आसानीकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आसानीकरण या पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। गजा के निवासियों द्वारा आबाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर हमास का ही नियंत्रण है, इसलिए पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो सकता। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में बच्चों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे अपना दिन लकड़ी, कीले और ऐसी चीजें इकट्ठा करने में बिताते हैं जिससे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या बेचा जा सके। लेकिन अगले सितंबर से हम पौत्र परिवार पल्ले में अपना स्कूल फिर से खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम 1000 बच्चों को स्कूल में दाखिला दे सकेंगे। इस तरह वे अब सड़कों पर बेकार में अपना दिन नहीं बिताएंगे। उनके लिए फिर से सीखना शुरू करना जरूरी है।
धीरे धीरे वे युद्ध के सदमे और आघात से उभरेंगे। गजा में पौत्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित ने 17 जुलाई 2025 को हुए हमले को याद किया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और रविवार को एक विशेष समारोह मनाने की घोषणा की। इस बीच गजापट्टी में मानवीय संकट खत्म नहीं हुई है। इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं और अंदर आवागमन बहुत मुश्किल है। गजा शहर में पौत्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने बताया कि खान यूनिस के पश्चिम में एक इलाके में ड्रोन ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। गजा शहर के समुद्र तटों पर हटाए गए टेंट पर छापे मारे और शहर के जैतून एवं तूफा इलाकों में गोलीबारी हुई। युद्ध विराम अभी भी लागू होने के बावजूद गुरुवार 16 जुलाई को गजा में इसराइली सेना के द्वारा 5 लोगों की मौत हो गई। इसलिए गजा में ना तो गोलीबारी रुक रही है और ना ही मानवीय संकट समाप्त हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले 17 जुलाई 2025 को लातिनी पल्ली में इसराइली सेना के हमले हुए थे, जिसने कलीसिया और पूरी दुनिया को हिला दिया था। फादर गैब्रियल ने हमले के 3 दिन बाद 20 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें के शब्दों को याद किया, जिन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया था, पीड़ितों को याद किया था और शांति एवं मानवीय कानून के सम्मान के लिए आवश्यक अपील की थी। इस बीच रहने के हालात अत्यंत मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को मलबे में बदल चुकी जमीन पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप अभी बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।